0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इराक ने सऊदी अरब तेल पाइपलाइन पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन प्लेटफार्म पर कब्जा कर लिया है। इराकी हुकाम ने इराकी सरजमीन पर सऊदी अरब में तेल की पाइपलाइन पर हमले में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन लॉन्च प्लेटफार्म को कब्जे में लेने का ऐलान किया है। इराकी सिक्योरिटी मीडिया सेल के सरबराह साद मान ने इराकी सरहदों के अंदर प्लेटफार्म पर कब्जे की तस्दीक की है और कहा है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी यूनिटों पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स ने प्लेटफार्म पर कब्जा कर लिया है। मामले की तहकीकात जारी है। फ्रांसिक माहरीन प्लेटफार्म से मुतलिक शवाहद और तकनीकी दस्तावेजात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हुकाम हमले में मुलव्वस अफराद की शिनाख्त के लिए फील्ड और इंटेलिजेंस का काम भी जारी रखे हुए हैं। फ़िलिस्तीन ने ब्रिक्स के फ़िलिस्तीनियों के हकूक के हिमायत पर मबनी बयान का खैर मकदम किया है। फ़िलिस्तीन ने ब्रिक्स सरबराह इजलास के फ़िलिस्तीनियों के हकूक दो रियासती हल और अक़वामे मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीनियों की मुकम्मल रुकनीत की हिमायत के हामिल एलामिया का खैर मकदम किया है। फ़िलिस्तीन वजारत खारजा ने जारी करदा बयान में फ़िलिस्तीनियों के हकूक और फ़िलिस्तीन मकसद की हिमायत के ऐलान को सराहा और कहा है कि मकबूजा मशरक़ी यरूशलम में समेत फ़िलिस्तीनियों को इनकी सरजमीन से ज़बरदस्ती बेघर करने की कोशिशों को मस्तरद किया जाना काबिल तारीफ है। इलामिया में इसराइली कब्जे के खात्मे का मुतालबा किया गया और दो रियासती हल की हिमायत की गई है। अलावासी रियासत फ़िलिस्तीन के अक़वामे मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की भी हिमायत की गई है। फ़िलिस्तीन इंतजामिया ने मशरक़ वुस्ता में फ़िलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वामे मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA और इसके मैंडेट के लिए ब्रिक्स की हिमायत का भी खैर मकदम किया है। इलामिया में ब्रिक्स ममालिक ने मकबूजा मशरक़ अल-क़ुद्स में मुकदस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और इन मकामात तक रसाई को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया है। इसराइल ने जनूबी लुबनान पर हमले तेज़ कर दिए हैं। लुबनान की कौमी खबरसान एजेंसी के मुताबिक जनूबी लुबनान के अल-मंसूरी कस्बे में 30 से ज़ायद धमाके हुए हैं। इसराइली हमलों में घरों और बुनियादी शहरी ढांचे को निशाना बनाया गया है। खबर के मुताबिक कुछ मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। एक इसराइली ड्रोन ने कस्बे पर ज़्यादा धमाका खेज मवाद से लदे कंटेनर भी गिराए हैं। अल-मंसूरी कस्बे को भी इसराइली तोपखाने से निशाना बनाया गया है। जनूबी लुबनान के दीगर इलाकों में इसराइली जंगी तैयारों ने तायर, नबतिया, बिनते जबील और मरजऊम के इसला में मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौजों ने पूरी इलाके में धमाके और तोपखाना हमले भी किए हैं। रूस से मुंसलिक जमहूरिया तातारिस्तान में ड्रोनों के जरिए किए गए हमले के नतीजे में शहरी और सन्नती तनसीबात को नुकसान पहुंचा और दो अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। जमहूरिया तातारिस्तान की सदारती इंतजामिया के जारी करदा बयान के मुताबिक यूक्रेनी फौज ने नजने कामसक शहर को ड्रोनों के जरिए निशाना बनाया है। बयान में कहा गया है कि हमले के नतीजे में शहरी और सन्नती तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। एक इमारत में आग लग गई, तहम पैदावारी अमल जारी रहा है। हमले में दो अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए हैं। दूसरी जानब रूसी वजारत दिफा ने जारी करदा बयान में कहा है कि रात के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में यूक्रेन के 389 ड्रोनों को नाकारा बना दिया गया है। एक अमरीकी थिंक टैंक 20 साल तक हजारों मुसलमानों की निगरानी करता रहा है। अमरीका में एक दाएं बाजू के थिंक टैंक ने तकरीबन 20 साल तक हजारों मुसलमान अमरीकियों और मुस्लिम तंजीमों का एक वसी डेटाबेस बरकरार रखा है। हफ पोस्ट के मुताबिक 1994 में कायम होने वाले मिडल ईस्ट फोरम ने 4 मिलियन से ज्यादा डेटा रिकॉर्ड मुरतब किए हैं। इस डेटाबेस में अफराद के नाम, सोशल मीडिया अकाउंट और टैक्स की मालूमात के साथ साथ मसाजिद, स्कूलों, कारोबारों और दीगर तंजीमों के बारे में तफसीलात शामिल थीं। डेटाबेस में इन अफराद और ग्रोहों के बारे में भी मालूमात मौजूद हैं जिन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहादी समझा जाता है। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुईं।

बरकरार रखने के लिए 1853 में एक नया चांदी का सितारा तैयार करवाया। सुल्तान अब्दुल मजीद की हिदायत पर ले जाकर गार में उसकी जगह नस्ब किया गया। यह सितारा वही है जो आज भी गार विलादत में महफूज है। यह सूरत हाल जाहिर करती है कि एक अलामत सिर्फ एक मजहबी निशान नहीं होती, बल्कि उसका बराह रास्त ताल्लुक सफारतकारी, सियासत और सरजमीन फिलिस्तीन पर तारीखी ताकत के तवाजुन से भी होता है। आज जब आप बैतुल्लहम जाते हैं तो आप देखते हैं कि रोमन ऑर्थोडॉक्स, आर्मेनियाई और कैथोलिक रवायात के साथ साथ इस मिट्टी के मकामी फिलिस्तीनी ईसाई भी इस कदीम विरसे को जिंदा रखे हुए हैं। मुख्तलिफ जबानों में पढ़ी जाने वाली दुआएं और इबादतें इसी गार के पत्थरों में गूंजती रहती हैं। बैतुल्लहम के इस सितारे के गिर्द सदियों का अकीदा, सफारतकारी, उस्मानी विरसा, यूनेस्को का तहफ़ और फिलिस्तीन की गहरी याददाश्त सब एक साथ मौजूद हैं। अगली किस्त में हम बैतुल्लहम के जेर ज़मीन चांदी के सितारे से निकलकर यरूशलम के आसमां की तरफ बुलंद होने वाले सुनहरे गुंबद की तरफ चलेंगे। हम कुब्बतुल सखरा की तर्ज तामीर, उसके तनासुब और उसकी सौती खसूसियात पर बात करेंगे। अगली किस्त के लिए खुदा हाफिज। फिलिस्तीन की तारीख और पसे पर्दा कहानियां।